नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करें।

0: सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है।

है विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा चरित्र द्वारा होती है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 300। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज इसका तीसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत और 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 8:30 से सुनेगा चित्रलोक।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर, आलेखन सर ममता सिंह का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इसके अंतर्गत लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से आपको सुनवाएंगे रंग तरंग। दिन में 12:05 से यादों की महफिल। सुरीला सफर का समय होता है 1:00 से। त्रिवेणी सुनिएगा 2:00 से। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 2:30 से। 3:00 से सुनेगा सखी सहेली। इसके अंतर्गत विषय है वृद्धावस्था और पोषण। कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कला जगत से संबंधित नुदमोली सुमति। कहानी मुझे कुछ कहना है के अंतर्गत बचपन के मजेदार अंधविश्वास। उपयुक्त टिप्स के अंतर्गत रसोई रहे चमकती। संवादक है मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4:00 से सुनेगा हेलो फरमाइश। संवादक है ममता सिंह, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:00 से। तराने नए पुराने सुनेगा शाम 5:30 से। शाम में झरोखा सुनेगा 6:30 से। 6:35 संध्या आपको सुनवाएंगे संध्या रंजन। शाम 7:00 से प्रसारित किया जाएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनेगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रात 8:00 से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटिका शराफत, लेखन लोकेन्द्र शर्मा का, निर्देशन अचला नागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक सुनिएगा, समाचार संध्या सुनवाएंगे रात 8:45 से, रात 9 से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से सुनेगा आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता उत्तम कुमार पर, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात्रि 10:30 से, और रात 11 से सुनवाएंगे आपको रंग तरंग।

अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 300।

भयभीत सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के समक्ष घुटने टेक दिए। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा याचना करता हुआ बोला, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पांच तत्व स्वभाव से ही जड़ होते हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि करने के लिए उत्पन्न

किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। आप जैसा आदेश करें मैं वैसा ही करूंगा। सागर का निवेदन सुनकर कृपालु श्री राम प्रसन्न हुए, बोले, तुम वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना पार उतर जाए। हे नाथ, वानर सेना में नल और नील ऐसे दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषि से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनके स्पर्श मात्र से भारी भारी पत्थर और पहाड़ जल में तिरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अतः आप इनसे सेतु निर्माण कराइए और उस पार जाकर पापियों का विनाश कीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। श्रोताओं, श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉ

0: डॉक्टर शकुंतला भरणे। शकुंतला जी, आज की कड़ी में हम वो कौन सी विशेषता है किराना घराने की जिसके बारे में जानेंगे?
1: किराना घराने की विशेषता के बारे में तो हम बोलेंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जयंत जी, संगीत का मुख्य अंग है स्वर, और स्वर के साथ है लय
0: जी।
1: इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। स्वर संगीत की आत्मा है
0: जी।
1: स्वर के बिना संगीत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यही राग की पहचान, भाव और सौंदर्य का आधार होता है।
0: बिल्कुल।
1: लय संगीत की धड़कन है। लय संगीत की गति, संतुलन और अनुशासन प्रदान करती है संगीत को
0: जी।
1: लय के बिना गायन प्रभावशाली नहीं हो सकता, है ना
0: जी।
1: स्वर और लय का संतुलित समन्वय ही उत्कृष्ट संगीत की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: जब स्वर और लय का सुंदर मेल होता है, तभी संगीत श्रोताओं के मन को एकदम वो स्पर्श करती है
0: जी। जी।
1: प्रत्येक घराने में स्वर और लय के प्रयोग की अपनी विशिष्ट शैली होती है, और यही विशेषता प्रत्येक घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान देती है।
0: अच्छा।
1: किराना घराने के बारे में अब स्वर प्रधान उसे माना गया है। इस घराने में स्वर की शुद्धता
0: जी,
1: जैसे मैंने बोल दिया आपको, श्रुति, उसका सूक्ष्मता, उसका जो सूक्ष्म प्रयोग जो हम करते हैं, मिंड पर विशेष बल देते हैं
0: जी।
1: जबकि लय का प्रयोग संयमित और राग के भाव के अनुरूप किया जाता है। इसीलिए वो मैंने बताया ना आपको, सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गए। कहने का मतलब है, लय से स्वर निर्माण नहीं हुई, स्वर से लय निर्माण हो गई, ऐसा ही हमें ग्रहित धरना पड़ेगा। स्वर और लय परस्पर पूरक है
0: जी।
1: फिर भी प्राधान्य तो स्वरों को ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: स्वर की सिद्धि नाद श्रुति से ही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नाद के बिना गीत नहीं, नाद के बिना स्वर नहीं, नाद के बिना संगीत नहीं, और नाद के बिना जगत नहीं।
0: वाह।
1: इसकी प्रचिति दिखाने के लिए कुछ तो सुनना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। लय और स्वर
0: जी,
1: इसके बारे में अगर आप सोचे, भारतीय संगीत में अग्रगण्य महत्व दिखाने के लिए परिपूर्ण गायकी जो है
0: जी, जी।
1: वो ग्वालियर गायकी के पंडित डीवी पलुस्कर, आपने तो सुना होगा उनका भजन वगैरह
0: जी। बिल्कुल।
1: पंडित डीवी पलुस्कर स्वर प्रधान गायकी, शुद्ध मधुर स्वर और अत्यंत सुरीले स्वरों के कलाकार थे। स्वर और लय का संतुलन, स्वर के सुंदरता के साथ लय का साधा हुआ एक निर्वाह, भावपूर्ण गायन, बंदिश और भजन में शब्द के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, स्पष्ट तान, सीधी स्वच्छ और प्रभावशाली तान, ग्वालियर घराने की छाप, सरल स्पष्ट और राग की शुद्धता पर आधारित उनका जो प्रस्तुतिकरण है
0: जी, जी। तो शकुंतला जी, उदाहरण स्वरूप जो पंडित डीवी पलुस्कर जी की रिकॉर्डिंग हम सुनने वाले हैं, वो किस राग की बंदिश है?
1: वो राग हमीर में है।
0: वाह वाह,
1: बहुत ही प्यारा राग है।
0: हाँ।
1: और बहुत ही अच्छी चीज है।
0: आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने पंडित देवी पलुस्कर का ये हमीर सुन लिया
1: जी जी,
0: जिसकी गायकी तो ग्वालियर घराने की है।
1: हाँ।
0: अब ग्वालियर घराने के बाद किराना घराने का जो गाना है
1: जी,
0: उसके बारे में हमारे किराना घराने के विशिष्ट पहचान देने वाले जिसे हम प्रवर्तक कहते हैं
1: जी,
0: खान साहब अब्दुल करीम खान, ये किराना घराना के युग प्रवर्तक गायक
1: जी,
0: उन्हें हम मानते हैं। उन्होंने स्वर प्रधान गायकी, मधुर मींड, सूक्ष्म श्रुतियां और विलंबित आलाप के माध्यम से किराना घराने को एक नई ऊंचाई और व्यापक प्रतिष्ठा दी है। खान साहब के बारे में बहुत बोलने को तो जी चाहता है, लेकिन उनका गाना ही सुन के हम उसका जो अनुभव लेना चाहते हैं।
1: हाँ।
0: खान साहब का राग शंकरा सुनेंगे।
1: वाह वाह।

0: बहुत ही अप्रतिम ऐसा ये शंकरा
1: जी
0: हमने सुना, खास साहब का ये शंकरा सुनकर।
1: जी जी,
0: वैसे तो कुछ भी और सुनना नहीं है, सिर्फ यही मन में लेकर हमें जाना है ऐसा लगता है, लेकिन सुर का महत्व देने वाला लता जी का सुंदर स्वर जो है
1: जी,
0: वो तो उनको एकदम लगता है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संत ज्ञानेश्वर फिल्म के गाने के साथ। भरत व्यास हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224004000।

0: 662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तेलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी का जन्म दिवस है, इसलिए आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। लीजिए अब सुनिए भरत व्यास का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम सती सावित्री।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाजों में पारसमणि। फिल्म का गाना असद भोपाली है, गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का गाना। प्रदीप हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में बॉक्सर फिल्म से। असद भोपाली हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है मन मंदिर और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे, मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और खयाम का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम है शगुन। तो लीजिए पेशे खिदमत है ये गाना।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है गाइड।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत।

0: ईत रहना जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अब आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

0: सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डवेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
7: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2000 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.0

0: 4% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
2: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितम्बर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
4: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
5: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6वीं और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग-अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

साथियों, हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

मौसम के अनुसार अपने स्थानीय इलाके में मिलने वाले फल और सब्जियों का सेवन करना सबसे बेहतरीन उपाय है। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियां, सीजन के दौरान ये चीजें भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण दाम भी कम होते हैं और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने से सेहत बनती है और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति से साथ बैठकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। परिवार के साथ खाने से रिश्तों में मजबूती, प्यार और अपनापन बढ़ता है। दिन भर की थकान मिटती है और मानसिक शांति मिलती है।

साथियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के सही खानपान पर विशेष ध्यान देकर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सही तरीके से मना सकते हैं। आज की त्रिवेणी अब संपन्न होती है।

0: मंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
3: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
3: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं
5: हाँ जी।
4: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं
6: हाँ जी, हाँ।
4: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
6: नहीं नहीं, अभी नहीं।
4: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
7: कुछ लिखा
4: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं के कुणाल और प्रवीण मणि की आवाजों में गुलजार के लिखे गीत के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने। फिल्म का नाम साथिया।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, चंद संदेशों के पहले आपने जो गाना सुना वो हमदम सुनी और साथिया फिल्म से, और आप समझ ही गए होंगे कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता विवेक ओबेरॉय जी का जन्मदिवस है। हम उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपको सुनवाते हैं विवेक ओबेरॉय जी की ही फिल्म का गाना। फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय, और आवाज़ें हैं साधना सरगम और

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम उदित नारायण की आवाज़ों में क्यों हो गया ना। इस फिल्म का गाना जावेद अख्तर के थे बोल और शंकर एहसान लॉय की थी तर्ज। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना। प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती
0: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नताली दी लूसियो की आवाजों में इंग्लिश वो इंग्लिश फिल्म का गाना स्वानंद किरकिरे हैं। गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे संतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना। इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने, नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में, गुलजार ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है विशाल भारद्वाज ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए ऋत्विक तलाशिलकर की आवाज में मलाल फिल्म का गाना। गीतकार हैं प्रशांत इंगोले और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
5: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
5: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
5: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
6: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए अल्तमश फरीदी की आवाज में कौसर मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम थे गीतकार और संगीतकार थे देवी श्री प्रसाद। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मनोज तिवारी की आवाज में गैंग्स ऑफ वासेपुर, यह है फिल्म का नाम। वरुण ग्रोवर हैं गीतकार और संगीतकार हैं स्नेहा खनवलकर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल के पास जाकर

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकल

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 बरस पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल

0: पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्ज़ाम दी और जब उसका रिज़ल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज़ किया।
1: अच्छा।
0: और दरअसल

0: कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
0: जी
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया,
0: हाँ,
1: तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
0: उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी,
1: शब्द
0: तो
1: फूटते हैं बहुत
0: शब्द
1: सारे।
0: फूटते, ऐसे झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है। और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई।
1: जी
0: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी।
1: जी
0: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी हैं। एक एक
1: शरद
0: दफा,
1: जी यानी आपके पतिदेव
0: जी जी
1: जी।
0: मेरे पतिदेव, एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ देखा है मैंने,
1: क्या बात है।
0: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है,
0: जी, इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को
1: लिखी थी।
0: समर्पित की थी। जी
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर। कौन सा
0: अरे
1: गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए
1: जी,
0: जाते
1: और
0: थे।
1: ऑर्डर देके भरवाते थे कि ये वाला
0: हाँ,
1: गाना
0: ऑर्डर
1: वो वाला
0: लिस्ट होती
1: गाना।
0: थी एक छोटे से, तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, और
1: जहां
0: तो वो
1: मिलके
0: गाना सुनवा दीजिए।
1: जी।

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
0: जी
1: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
0: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
1: जी
0: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: बताइए कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
1: जी, लेखन की शुरुआत मैं कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
0: जी
1: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
0: जी जी
1: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे,
0: जी
1: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
0: क्या बात है,
1: हाँ जी, तो
0: क्या काम
1: हमारे
0: करती थी?
1: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, मेरी श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही, और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
0: क्या
1: है।
0: बात है भाई,
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये 4 पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
0: जी
1: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये 4 देवकीनंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
0: जी
1: ये पत्रिकाएं हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
0: जी जी
1: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानी

0: अनिया, इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी और हम
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
0: साप्ताहिक
1: थी।
0: हिंदुस्तान
1: जी
0: में, तो
1: बिल्कुल,
0: हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
1: आगे
0: क्या
1: क्या
0: हुआ।
1: होगा, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ, वहां ये बीज पड़ा और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहां जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहां है वहां पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
1: जी,
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे। तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
1: जी,
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
1: जी,
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो वहां से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की कि, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे। तो बस वो एक कच्चा कच्चे, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहां चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहां से शुरू हो गई थी।
1: जी, तो
0: जी
1: या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है,
1: हाँ
0: तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया कि
1: हाँ
0: एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई
1: हाँ
0: और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा,
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार कौंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है।
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी
0: तो जब यादों को टटोलने लगी अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी। मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है,
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है, लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से,
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह, क्या बात है, बहुत
0: लकड़ी का
1: बढ़िया
0: पलना ऐसा होता है।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: जी
1: फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ, तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो,
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु,
1: जी
0: और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए। क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ही सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नजर बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नज़र बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नज़र बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नज़र बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नज़र बट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नज़र बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक
0: हाँ
1: नहीं लगता, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: एक आस्था होती है, इसलिए वो नज़र बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ।
1: टंगाया
0: और
1: जाता है।
0: खेतों

0: में
1: और
0: किसान
1: खेतों में
0: कृषक भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नज़र बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नज़र बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नज़र बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है।
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नज़र बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नज़र बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो सिर्फ हिंदी में करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो
1: जी
0: कैसे वहां जुड़ी आप।
1: मुझे ना ममता जी एक चीज़ लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: किताबें तोहफे में देना,
1: हाँ
0: और सबको ये सीखना चाहिए
1: जी
0: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
1: हाँ
0: दें।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी। वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
0: जी
1: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
0: क्या बात है,
1: जी
0: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए, और
1: जी
0: बहुत बढ़िया।
1: धन्यवाद।
0: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को,
1: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
0: कहानी है।
1: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए। तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: जी।
1: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
0: क्या बात है भाई,
1: हाँ जी,
0: वाह।
1: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
0: माँ कभी मंदिर नहीं
1: माँ
0: जाती
1: कभी
0: थी।
1: मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
0: वाह क्या बात है।
1: जी
0: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह
1: जी जी
0: हैं। इनकी इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी
1: नहीं,
0: है, और कितने
1: दरअसल
0: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
1: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
0: जी
1: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
0: जी।
1: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी

0: ये आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
1: सारा
0: पूरा
1: आकाश,
0: दीजिए
1: क्या
0: ना,
1: बात
0: है
1: है।
0: ना, सारा आकाश।
1: हाँ
0: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी जी
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ
0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है।
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या
1: मेरा
0: मेरा
1: कुछ
0: कुछ
1: नहीं।
0: नहीं,
1: जी
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया।
1: वाह।
0: कहा जा, पूरा क्षितिज तेरा, जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी,
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
1: हाँ
0: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
1: बाकी
0: है
1: नहीं।
0: जिंदगी,
1: जी
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती।
0: कि
1: मेरा जो
0: उनके
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है, ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
0: बढ़िया।
1: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर
1: तो
0: लेते हैं।
1: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
0: वाह क्या बात है।
1: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
0: लिखने का वक्त नहीं
1: एकांत
0: मिलता।
1: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
0: जी तो ये
1: हूँ
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: जी
0: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके उनके यहाँ मिले, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो
0: अरे
1: येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
0: जी
1: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उससे जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई, तब तक मुझे इस चीज का
0: अंदाजा नहीं था।
1: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
0: होली के दिन।
1: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल,
0: हाँ
1: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन
0: हाँ
1: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही।
0: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
1: जी
0: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
1: जी
0: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
1: जी
0: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
1: जी
0: शब्द साधिका सम्मान से आपको
1: जी
0: सम्मानित किया गया।
1: जी
0: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
1: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
0: जी
1: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
0: गौरव
1: की
0: की
1: बात
0: बात है।
1: थी, गौरव
0: बिल्कुल।
1: की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
0: जी
1: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थके सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
0: बढ़िया।
1: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीज़

0: काम आती है। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी, तो जितने भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके,
1: जी
0: जिसमें सिक्किम के लेह लद्दाख के ये सब तो थे ही। इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
1: जी
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह, क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा
0: स्कूबा
1: डाइविंग?
0: डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है, और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: हाँ, तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ
0: हाँ
1: पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी जी
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी।
0: जी
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची होती
1: चाची,
0: थी।
1: काकी, मामी, बुआ जी,
0: दादी
1: मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडनो बनाई ले, मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, आ घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
0: जी।
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड व्हाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और व्हाइट कलर से उस पर डिजाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो वो क्या थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना,
0: हाँ,
1: तो चूंकि शरद
0: तो
1: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं,
0: हाँ
1: तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
0: वाह, क्या बात है।
1: वो फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक
0: बिक
1: गए।
0: गए,
1: जी,
0: वाह क्या बात है।
1: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहाँ पर एग्जीबिशन होती थी तो वो की, और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
0: जी
1: हस्तलिखित या हाथ की चीज़ की वैल्यू अलग होती है, उस वो
0: बिल्कुल।
1: अनमोल होती है दरअसल।
0: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
1: जी
0: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
1: जी
0: संग्रह आए,
1: जी
0: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए, और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
1: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है,
0: जी।
1: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
0: जी।
1: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है, और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
0: अच्छा।
1: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
0: क्या
1: तो
0: बात है,
1: काफी समय से
0: वाह।
1: लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा अभी 5 लघु कथा संग्रह है।
0: बढ़िया।
1: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं,
0: जी।
1: दरअसल लघु कथा का

0: शीर्षक है ढक्कन।
1: जी।
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
1: जी।
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों की परवरिश उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए, उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई,
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके अंत में एक पंच होता है,
1: जी जी जी बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
0: जी
1: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं।
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
1: जी
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है, मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है,
1: जी
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल। हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु
1: जी।
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी। मतलब देखिए समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
1: क्यों
0: फेंका।
1: फेंका?
0: तो ये बीज हो गया, अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ, ऊपर से निकल जा भाई,
1: हाँ,
0: तेरे को जल्दी।
1: जल्दी है तो।
0: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो तो मैंने जाकर के एक व्यंग

0: लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
1: क्या बात
0: है ना।
1: है।
0: तो इस तरह से विषय कब आ जाते हैं, और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास, और उसकी नींव ही ये पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी,
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है, और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं
1: जी
0: वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी,
1: वाह,
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
1: कविता
0: कविता
1: सुनाना
0: सुनाती
1: चाहते हैं।
0: हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ठ की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह त्यजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काठ की किताब से ली है।
1: जी
0: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने हवा के साथ कभी कभी, ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
0: जी
1: आपका
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: मुझे
1: नमस्कार।
0: भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा, पिटारा।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: Ланг Таранг.
1: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज में। मौसिकी है खयाम की।

मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, किसी का मांगी हुई दौलत से भला होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। आइए सुने मुनीर का कलाम, गायक और संगीतकार अनूप जलोटा की आवाज़ में।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सुनिधि चौहान को सुनिए अगले पॉप गीत में। गीतकार है विशाल ददलानी, म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए एक गैर फिल्मी रचना लक्की अली की आवाज में। असलम का लिखा गीत, एल्बम का नाम है सिफर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए अलीशा चिनोई की आवाज में। गीतकार हैं श्याम अनुरागी, म्यूजिक है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: साथियों, कार्यक्रम रंग तरंग अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कौन
1: प्रस्तुत करता है
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
3: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
3: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
3: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
3: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
3: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से सम्पन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
3: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
3: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
3: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
3: अच्छा, तो ये बात है?
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो 3-4 यात्री ही हुआ करते थे।
3: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
3: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
3: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
3: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
3: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
3: सही कहा जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
3: जी,
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि

0: काना हरारा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली
1: जी। और फिर मार्च 2016 में क्यू शिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी हाँ श्रोताओं, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता

0: पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
3: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
4: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
5: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
6: और मैं सुचित्रा हूँ।
5: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
6: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
5: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
6: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
5: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
7: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, न पढ़ना न लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
8: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
7: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
8: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
7: ना जाने क्या होगा इसका।
8: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
7: अरे वो सब तो ठीक है, पर
8: जाने क्यों, मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
6: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने

0: रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
1: जोर से मारना।
2: है ना? अरे इधर तो आओ। हाँ हाँ आते हैं।
3: सैम, है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
3: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
2: कैसा प्रयोग?
3: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
1: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
3: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
1: अच्छा
3: अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
4: अच्छा।
3: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
1: ठीक है।
3: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
4: अच्छा।
3: सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
2: अच्छा हम जाते हैं, हम जाते हैं।
3: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
2: हाँ।
3: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
2: हाँ, भेजो। जल्दी भेजो।
1: अरे वाह, क्या बात है!
2: क्या बात है!
1: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह!
3: सिग्नल मिला?
1: हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
0: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
5: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।

0: आपके साथ होते।
1: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
0: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
1: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
0: देखता हूं।
1: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
0: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?
1: ये तो क्रिसमस कैरोल है,
0: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
1: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
0: वाह, क्या बात है!
1: पहली बार सुना है ऐसा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल, रविवार का दिन था। टाइटैनिक, विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज, एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
1: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डैक की ओर भागो।
6: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
7: Oh my God! ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
8: हेड पर कितनी बड़ी खराब पड़ी है? अरे बचाओ! अरे तो पानी
1: भरे। जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक इन हरी।
7: Yes, yes, Captain Smith. Yes.
1: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। Save Titanic, ship location 40 degree north and 25 degree south. I repeat, 40 degree north and 25 degree south. Or head, life signal bhejo. Send general call distress.
7: Jaldi, jaldi karo.
1: Jeevan Rakshak naave ko niche utaro. Life force, utaro life force ko niche utaro.
9: It has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अग्निपथ।
3: मेरे हीरो,
4: ये क्या करती?
3: मेरे जानो,
4: मुझे डर लगती है।
3: मेरे बालम,
4: तेरा भाई हमको मारती।
3: तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?
4: कर जाती।
3: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
4: अच्छा अच्छा, कर जाता।
3: मेरे लिए मर जाता?
4: हाँ मर जाता।
3: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।

0: कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडल।

फिर पान भी चबाया, फिर इत्र भी लगाया। थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़खड़ा गया मैं, मेरी चोट

दोनों है झमेला, दिन रात की सलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी। फिर उसके बाद बच्चे रोते हैं अच्छे अच्छे, मुझको तो तोता बन के

और वो राजा गूंजा खुशी का बाजा, ये रानी और वो राजा गूंजा खुशी का बाजा, जारी है जश्न शादी बाकी है रात आधी, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, मुझे आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, मुर्गे

0: महीना, मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना।
1: आइए अब सुनिए अलका याग्निक को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है खलनायक।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कार्यक्रम यादों की महफिल में आज हमने सुने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एग्रीमेंट परमानेंट हो गया फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया। पतरी की है मोटर का जानवर सी नहीं वफादार। मरते दम तक चले टमटम तो रुत रंगीन हो जाती है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। सबकी जुबां पर मेरी कहानी मुश्किल है यूं मुझको फंसाना। अरे पगला है कोई उसको बताना वो क्या है मैं कौन हूं ये जान चुकी हूं मैं। उसको अपने साथ ही लाना कि दिल ही नहीं लगता। वो रोए तो राजेंद्र हंसे तो जितेंद्र हर हीरो की खूबी उसके अंदर। मुझको ये इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है। तेरी नजर पे ही ये मेरी नजर है कि तूने बिठाया है मुझ पे पहरा। आया है जोगी बनके लुटेरा। प्यार की कीमत किसने अदा की जब कभी होंगी बातें वफा की। सबकी जुबा पर होंगी अपनी कहानियां। अब याद में तेरी कट जाएंगे जीवन के दिन चार। खुश रहना मेरे यार। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश। सुरीला सफर का इवेंट है ये इबारत नहीं अरेंजमेंट है। श्रोतागण भी प्रेजेंट है अनोखा कंटेंट है। गाने सभी इबारत में ही साइलेंट है। संगीत में सफर में उपस्थित रहने का हमारा भी कमिटमेंट है। आज की कहानी इंसानियत की पहचान कराती है। जो ईमानदार होता है वो वफादार होता है और वही परेशान होता है। घोड़ा हाथी की हालत कैसी होती है जब जरूरत होती है तब तक रखते हैं उसके बाद मोटर ट्रैक्टर जैसे वाहन काम आते हैं। किसी ने ये मैसेज लिखा है कि वैसे तो मुझे सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं पर कुली का एक्सीडेंट हो गया वाला गीत मुझे पसंद है। एक्टर अमिताभ बच्चन इस गीत में बुरी तरह से घायल हो गए थे। और ये अगला कमेंट है कि आज की इबारत में वो गीत जो फिल्मों में पक्षियों जानवरों सांपों पे फिल्माए गए गीत हैं। जानवरों का फिल्मों में काम देखकर दर्शक बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। फिल्म नागिन निगाहें सूरज और चंदा में सांप पे फिल्माए गए दृश्य बहुत पसंद किए गए। सफेद हाथी हाथी मेरे साथी माँ जैसे फिल्मों में हाथी का काम देखने लायक था। और तो और फिल्मों में तेरी मेहरबानियां में तो डॉगी ने कमाल का काम किया था। ऐसे लगा कि फिल्म का असली हीरो तो वही है। ये अगला मैसेज है कि आज की इबारत का सबसे खूबसूरत पहलू उसका भावनात्मक मोड़ है। चंचलता और ठिठोली से शुरू हुआ ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें गंभीर रुमानी इकरार और वफा दर्द और विदाई का संजीदा रंग भी घुलने लगता है। प्यार की कीमत किसने अदा की से लेकर खुश रहना मेरे यार तक पहुँचते पहुँचते ये अल्हड़दार

दास्तान एक क्लासिक ट्रेजिक रोमांस का रूप ले लेती है, जहां जुदाई का दर्द तो है मगर शिकवे के बजाय महबूब के लिए सिर्फ एक दुआ बची रह जाती है। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें हाथी अपने मालिक का सबसे पक्का और वफादार दोस्त होता है। हाथी और उसके साथी नायक के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी? अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी-कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं, जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने, तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप? अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियां की, जिसमें एक मोती नामक लेबराडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था, और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, असरानी राज किरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूं। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं, तो बताइए कि ये टांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था। और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताएं। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था। आपके जवाबों का हमें है इंतज़ार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

हमारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म शोले में, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने, 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, विजू खोटे, मेक मोहन, और डायलॉग था, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। और यूं के हमें बेफिजूल बात करने की आदत नहीं है। कालिया और सांभा थे एक्टर विजू खोटे और मेक मोहन। बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम था लीला मिश्रा। और फिल्म में गब्बर सिंह बने अमजद खान पूछा करते थे, होली कब है होली?

अब कुछ संदेश भी पढ़ देते हैं कि सुहाना सफर का विषय आज का बहुत काबिले तारीफ है। हम सुन रहे हैं, हमारे यहाँ डुग्गी डॉग नाम का एक डॉग है, तेरी मेहरबानिया का गीत सुन, मैंने उसे दूध दिया और गीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद कार्यक्रम के लिए। साथ में बचपन में हम मुंबई में रहते थे, उस समय मैं करीब 4 साल का था और फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। जब रामू हाथी को गोली लगती है और वो मर जाता है तो मैं जोर जोर से रोया था और कह रहा था कि रामू हाथी मर गया। सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ फिल्म है, रामू हाथी मरा नहीं है। तो साथियों, फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए एक अभिनेता ने अपनी आवाज डब की थी, बताइए उस हीरो का नाम। और साथ ही ये भी बताइए कि जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी बताइए कि जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और भारत में कितने नेशनल पार्क हैं।

आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, फिल्मों में जानवरों के रोल की बात हो और नाग नागिन की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में सस्पेंस और बदले के लिए सांपों का खूब इस्तेमाल हुआ। रीना रॉय और श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाकर बड़ा तहलका मचाया था। जंगल में शिकार के दौरान कुछ दोस्तों ने एक नाग को मार डाला था। कौन से अभिनेता थे उस नाग की भूमिका में और नागिन बनी रीना रॉय के साथी कलाकार कौन थे, सबकी जानकारी हमें दे दे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सारे जवाब आपके मिल गए हमें, जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, योगिता बाली, रेखा मुमताज, फिरोज खान, विनोद मेहरा, संजय खान, कबीर बेदी और निर्देशक थे इस फिल्म के राजकुमार कोहली। कुछ सवाल हमने और पूछे थे कि तो मिला ये जवाब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पौड़ी नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए अपनी आवाज डब करने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान।

अब आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास तीन घोड़े थे जिनके नाम बादल, सारंगी और पवन थे। एक दोस्त ने हमें लिखकर भेजा है कि सर्कस बचपन में तो बहुत देखे हैं पर वहां जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं इसलिए अब नहीं देखते। स्कूल का होमवर्क भले ही याद ना हो लेकिन आप शोले के बारे में कुछ भी पूछें तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं हम तो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। अच्छा, और मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का एक डॉग है जो मेरे पास ही सोता है और जब मैं ऑफिस से वापस हम आते हैं तो वो मेरे पास ही रहता है। एक दोस्त का ये मैसेज है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। एक बार मेरे कार्य क्षेत्र में एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उसकी माँ उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्ला भी रही थी लेकिन वो जब असफल रही उसके बाद उसने हमारे स्टाफ के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ ने हाथी के बच्चे को निकाला। उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे को साथ में लेकर चली गई। क्या बात है।

साथियों, फिल्म जानी दुश्मन में एक इच्छाधारी नाग के बदले की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अरमान कोहली हीरो थे और दूत का कर्ज एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एक अनोखे सांप नागेश्वर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नायक सूरज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम लिख दीजिए। साथ ही फिल्म नाग नागिन में नजर आए थे राजीव कपूर, नाचे नागिन गली गली में मीनाक्षी शेषाद्री और शेष नाग में जितेंद्र और रेखा ने अहम भूमिका अदा की थी।

और अब बात होगी इस गाने की, जिसका नागिन डांस सभी शादियों में किया जाता है। एक इच्छाधारी नागिन खलनायक से अपना बदला लेना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खलनायक घर आकर अपनी बीन बजाते हुए तांत्रिक शक्तियों से ये सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है कि रजनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अंत में नाटकीय संघर्ष होता है जिसमें बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। तो

से बताइए कि इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम क्या था, और ये भी बताइए कि क्या आपने नागिन डांस किया है, ज़रूर बताइए। और इस फिल्म का पार्ट टू भी तो आया था, क्या नाम था उसका? और गीतकार हैं इस गीत के आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम तो आप जानते हैं।

फिल्म का नाम था नगीना और इस फिल्म में थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर, और खलनायक थे अमरीश पुरी जिनका नाम था भैरवनाथ, और दूसरे फिल्म का नाम था निगाहें जिसमें नायक थे सनी देओल, खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग नागिन, नागमणि, नाग पंचमी, निगाहें, नगीना, नागिन, पुरानी नागिन, नई आई, मिलन की रात, नाचे नागिन, गली गली, दूध का कर्ज, नाग देवी। ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में। वो तब तकरीबन बंद हो चुका है। वन्य जीवन कानून के अनुसार अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है, अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है, मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा, विविध भारती के चाहने वालों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग, जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित निर्देशक थे इस फिल्म के, सूरज बड़जात्या, टॉफी जिनको चिट्ठी देता है वो अभिनेता थे मोहनीश बहल।

एक साथी ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इस पारिवारिक ब्लॉकबस्टर फिल्म में टॉफी नाम का प्यारा सा डॉग एक अहम किरदार में था, जो क्लाइमेक्स में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाकर फिल्म की कहानी को सुखद मोड़ देता है। साइंस कहता है कि सांप के कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं देता, फिर बीन का क्या रोल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रोजाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है। भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। होली, अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेजों से लड़ते थे। इस गीत में दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अन्नू मलिक। फिल्म का नाम है मर्द।

मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

वर्षी नहीं वफादार, पटरे की है मोटर का।

तार क्यों भाई, बादल क्यों भाई, मोती सी मैं सचेता हूँ। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।

क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे

0: क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी जी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन क्या मारेगा।
1: साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि कुली में अमिताभ बच्चन की माता जी की भूमिका में नजर आई थी वहीदा रहमान, मुख्य खलनायक थे कादर खान। और इस गीत में जो जानवर नजर आए थे उनके नाम थे बादल और मोती। साथियों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। मैंने प्यार किया एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, प्रेम और सुमन की दोस्ती का एक उसूल था कि नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उस कबूतर का नाम बता दीजिए जल्दी से।

साथियों, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफर अब समाप्त होता है।

श्रोताओं नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।

साथियों, हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।